प्रशिक्षण नहीं रहूंगा। प्रशिक्षण कराने में तुम्हारे सारे को ध्यान दर्शन है।

संस्कृति विकास के बारे में हमने विशेष रूप से बातचीत करने वाली सबसे पहले जिंदापुर यहाँ के हमारे कार्यक्रम का स्वागत था। जिंदापुर सबसे पहले हमारे थारु समुदाय में ये वैशाख महीना था

habito con Ale, una rapita, manchan que va a vivir esta suele, su casi dos personas, manchan por su pita que usted no traiga. Traemos a Pital, Pita de Mati, la pita de Pachas y dos monos, la de la Mati para suele de Pachas y dos monos, la pita, Chibran Chuti, Madre, Manas y dos monos, Tinti, तथा दस मावी मोती पुले इकहत्तर दस मोती प्रतिशत प्रतिशत लाए कुछ के बच्ची मावी जो है करा ले चालीस दस मोती मोती में जनता मावी पिलवाले तो चालीस दस मोती प्रतिशत विद्यार्थी तीन नगराए कुछ संस्था दर विद्यालय दर पाइप यूनाइटेड पब्लिक स्कूल पासवर्ड एकेडमी पब्लिक स्कूल बाल ज्योति मावी को कोला मावी पुले मावी को कोला गोल्डन फ्यूचर मावी पिलवाले सब प्रतिशत नतीजा लाए कुछ अपने स्वस्थिक इरा मावी पास हो रही अठासी दशमलव आठ आठ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण कराएको छ। शिक्षा शाखा प्रमुख मन प्रसाद रेग्मीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष यसको नतिजामा सुधार भएको

0: I'm like, I don't skip that first scene. I'm not going to tell you what I'm going to do with the customer. I'm not going to tell you what I'm going to do with the customer. I'm not going to tell you what I'm going to do with the customer. I'm not going to tell you what I'm going to do with the customer. बढ़िया की चीज हो आगे की टीम देखिए मात्र इतने दिनों से इनके साथ प्रत्यक्ष प्रसारण भी रखा है और इनके हमारे कार्यक्रम फेसबुक लाइव लाख थे हमने संचालन कर रखा थी प्रत्यक्ष रूप में प्रसारण कर रखा थी हमारा कार्यक्रम हमने संचालन करते करते आज से 538 वर्षसम्म आपको बता कि यह कार्यक्रम में हमने विशेष करके स्थानीय सरकार मान्य जिम्मेदार निकाय के सरकार वाला प्रशासन सुशासन आदर्शी जवाबदेही होने की स्थानीय नागरिक समाज को उद्देश्य हमने ये कार्यक्रम निरंतर रूप में संचालन करते आता थी यही क्रम में आज हमें वास्तविक नगर पालिका जमीन अवस्थित ये संयुक्त भूमिहीन संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष के पर वास्तविक आशा बिका जीवसी आज हमने विशेष रूप में बातचीत करने के लिए थी नेपाल सरकार चाहिँ अबै भूमिहीन उपकरण चाहिँ भूमिहीन अनि सुकुम्बासी उपकरण चाहिँ यत्रो प्रक्रियामा उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरिरहेका सोचले चाहिँ अब हप्ताहारामा 2007 टका चाहिँ अब व्यवस्थित समाधान गरेको लागि तपाईँ प्रयास गरिरहेको तर यसले भूमिहीन सुकुम्बासी उसले अभ्यस्थित बसोबासी उनको फेर पीड़ित पार्ने का इसका एक तो संघर्ष समिति बना था तो आज इस संघर्ष समिति के विषय में हमने विशेष रूप में बातचीत बताई थी बता दी सरकार से करने काम चाहिए कुछ ही भूमिहीन उपकरण चाहिए व्यवस्थित कार्य करने को अनुदान चाहिए भूमि ना हो गुण चाहिए विस्थापित कार्य करने को तर अपनी अवस्था में चाहिए भूमिहीन लगायत अब भूमिहीन अब उहाँको त्यो एउटा विशेष रूपमा आज हामीले इन्डस्ट्रीको विषयमा बातचित गर्दै थिए हमर्सँग बातचित गर्दाखेरि आज हाम्रो स्टुडियोमा आसाराम बिजाज्यू आर्सिकी भएको थिए उहाँ यी कार्यक्रम हाम्रा फेसबुक लाइभ मार्फत गरेपछि चाहिँ कसैले हमारे कार्यक्रम में जिज्ञासा प्रश्न राखी सकते हमारे फेसबुक चैट में अपने राखे छात्री से 084 484 98 5 0 60 00 3 प्रश्न जिज्ञासा राखी हम कार्यक्रम में स्वागत स्वागत
1: धन्यवाद तर्फबाट पनि यो
0: पर्दाखेरि अब भूमिहीन सुकुम्बासी नेपाल सुकुम्बासी होइन भूमिहीन अधिकार के थुप्रै सम्भावना छन् होइन फेरि तपाईँहरूले यो संयुक्त भूमिहीन संघर्ष समिति भनेर आफ्नो एउटा संस्था गर्नुभयो यो राम्रो उद्देश्य के हो
1: यो संघर्ष समिति अब यो चाहिँ भने मूल्य समितिभित्र साथीको सल्लाह सुझाव अनुसार म यसमा सम्बन्ध भएर पछि तपाईँको भागमा भइरहेको थियो र साथीहरूको सबै साथीहरू विकास गर्नुभयो तपाईँको भयो भने मलाई त्यहाँ दार्जिलिङ हिँड्नु मन थियो समूहको सक्षम थियो भएर राजाको भयो यसको बारेमा अनि त्यसै कारणले त्यो यसको प्रदर्शन सत्तर मैले हेरेर विकेट थिएन म त्यो भएर म कमिट भएको थिएँ ठिक छ अब कसरी
0: राम्रो
1: त्यो प्रकार लागू हुन्छ Thank you. ఇప్పుడు ఒక సమస్య అయినా

0: नागरिक प्रति राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता घटी, नागरिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वसुलभ रूप में वृद्धि आई गई। यहाँ का दोनों स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक तरलता का ऐसी कौशल्य अस्पताल बासमेरी में संपर्क करना भारतीय का अनुरोध कर दी। अस्पताल से दे दी गई सेवा चौबीस घंटे डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा है। प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कॉलेजो नशा मुटु चेक जांच लिखा।
1: प्रत्येक दिन नशा तथा निम्न सर्जरी, हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी, प्रसूति सेवा, नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा जांच करा जाए।
0: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे, वीडियो एक्सरे, ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा। सुविधा सम्पन्न लैब का सेवा उपलब्ध भा। पैरालाइज शिशु को मुंह बांध बिना नशा दाब के लग हाथ द्वारा निचलना बिरंगी मुखना क्लास फिजियोथेरापी तथा एकुपेंचर थेरापी विधि से उपचार करी था।
1: नशा दाब के लग बिरंगी मुखन के बिना ऑपरेशन फिजियोथेरापी तथा एकुपेंचर थेरापी से सफल उपचार कर दे।
0: 24 घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था करी बा। नशा है नागरिक, एकल महिला, अनाथ बालिका, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक सेवा में 10% छूट के व्यवस्था करी बा। कौशल्य अस्पताल प्रणाली बासगरी शाखा 5 बासगरी बर्दिया पेट्रोल पंप दक्षिण बाजार।
1: संपर्क फोन नंबर 084400192 और 084400210 बासगरी बर्दिया संचालित फोनपुर 11 54।

0: समय हो। लाखों परीक्षार्थियों को एक पदक को खरीदने पड़ी गलत मानसिक समस्या र पढ़ाई में असर पुर्न सक्छ। साथी को दबाव में होइन आफ्नो सतर्कको पक्ष में निर्णय गरौं। तनाव भए खुला कुरा गरौं। समाधान लाखों परीक्षार्थ होइन लाखों पदार्थ बाट टाढा बसौं। स्वस्थ र उज्यालो भविष्य बजौं। रेडियो गुरुबाबा एफएम को सहकारी में स्वास्थ्य कार्यालय बर्दिया बाट जनहित में जारी साझे
1: Thank you.

0: बाजी करना, नारा बाजी करना और दोनों के अवांछित गतिविधि करना गैर कानूनी और वित्तीय अनुशासन विरुद्ध का निंदनीय कार्य हो।
1: एक नेपाल नवनिर्मित वित्तीय संस्था लिमिटेड हो रेडियो को द्वारा लेखन का सहकारी जारी बजाई संदेश
0: रेडियो पूर्वाधार एफएम को सहकारी स्वास्थ्य कार्य

0: भएपछि स्वस्थ जीवन अप्नाई निशा रोग छोट बहल त्यहाँ दिन जीवन खत्तम हुई सन्तुलित खाना खाई व्यायाम शब्द पढी
1: थुन पानी मटिरामा से थुना नहीं तर अनियन्त्रण गरी
0: आज निर्णय कालिक जीवन अजरा

0: Sekretar Hikmat Ali Sunjai. ये तो मैं नहीं चाहता अब उन्हें महिला सचिवों के पालन करने का एक फैसला मेरे घर में करता दूध उत्पादन में कमी आने उच्च दूषणी और सात से उच्च तापक्रम को कारण दूध उत्पादन घटे आमदारी और
1: सूर्य खत्म हो सकती है। जोखिम रहे समुद्र भरते

से सूत्र प्रसाद जी रूप होगी और विधायक से दिवस जो कोई यहाँ ऐसा था की जन रास्ता ज्यादा सूची पर रास्ता रही है बढ़िया फिर हो

विचार की दो फाटक आनी तो हाथ से मन में सीधा ना ले अपन जय पलाव तब मेरी सीधा जमनी नहीं तो कटो हो का करे इनका तो बाबा मेरे चाहे पहले तुम भी देखो राजा कहे मेरे को इनके की जब मैं मरे तो देखे तो पता नहीं आई तब रुके मरे मैं पुकारे हाथ से मरे सीधा ये तो सीधा तो कहता ठीक कटो तब मैंने लगा तब कहते जाओ ये तुम मेरे बाबा ही बड़ा ना गुरु वहां बातें मेरे पति है तब मैंने लगा कि दिन पापा ने बाबा छोड़ करे आकर भैया एक तो मरे आई ना मेरे जो किया ना तुम मेरे सीधा ना गया तो कहीं देखता तो कहीं हाथ से ना ले तो तुझे मैंने खोजा

चाहिए तो मजबूर कतरों को अत्याचार है या गुजरता लेकिन जाए तो कैसे उनके बोली न दे को हटन करके जो मैंने उठाए बदनों का खतर दिया पप्पा ने मेरी फिर गई और मैंने वो ना खाए अभी तो मैंने लगता हुआ टिक्के को तो दे दिया तपस्या तक पर नहीं तब क्या फिर को लगता हुआ दे के फिर पानी दिया ऐसे आप तरफ बचे तुम्हें बरकतों को उनका पहले वो तुम्हारे अब पप्पा जाके जाने पर ये रानी के लिए वो लाल पर मैं खत्म हो जाके वो ठीक है था कि बेच लगा दिया तब मैंने ये लड़का एक टिको पर मिलता एक लड़का एक टिको पर मिलता अब तो मैंने जहाँ को तरफता कि नहीं तब मैंने वो बाप मैंने तो जब बोली रखा तो मैं मरे पे तो कहते कि कोई मुझे राजा हो जाएगी तो मैं राजा के तो मैंने बच्चे देखे बच्चे तो जब वो अब बेच लगा तो मैं काम कर लेना करो नहीं पहले जो देखने का तो मैं मर रही है तो टिको पर उतार के तो मैंने पूछने की कहा को अरे कहा कर दो कुछ घटना कहो ऐसी समाचार तो कैसे

प्रोफाइल व्याकरण के दूसरे प्रोफाइल पर अमल हुए धो दिया उनके मन इलाका तक कुछ नहीं चाहे जमा झगड़ा करें इलाका तक एकदम तब वो कह सकते मैं धोखे करें डूबा के लिए घर होता घर एक लाख यहाँ एक लाख पर अति भी तो करो तब पता वो हो इलाका के काम उसे तब भी पता पड़ेगा ये तो मूर्त कपड़ा लाता मैं पहना के लिए हूँ तो मेरा कि यहाँ तक की कोई कौन मरी हूँ इलाका भी तो छोटे करके लिए दूर इलाका खूब होते भैया भैया में तब मैंने उठो के पूछा पाया भैया तुम उनके घर कहाँ हो वो राजा इलाका प्रश्न पूछ रहे हैं बोला तो कहता है मुझे मुझे घर हो अपन पता ही नहीं तो भाई मुझे एक काम करे आएगी तो रात के दिन मैंने खा ली बताई लिया तो कहीं कहा था कि तब आप आए हम लेके तो मैं खाए थे

टाइम का आधार इतना था, हम इतना समय सीखे रात मेरे छोटे बच्चे पर ही पूछ लो हमारे जवाब दिया उनके काम सेंटर खुद देखा था हमने तमाम पैसा से मैंने खराब तो पालक तो कहते ठीक

प्रकट हुई सन्तुलित खाना खाई व्यायाम शब्द करी धूम्रपान घटी अवश्य दूर रही तर फल नियन्त्रण करी आज निर्णय काली जीवन निसर्गा रोग बाँची स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो गोर्खा कार्यक्रमको सहकारीमा स्वास्थ्य

मुझे मतलब कि पांच मिनट फोटो जरूरत में देना हो आपकी सुनता है की करना बड़ा मजा है ऑर्डर पसंद ना नंबर वन सुनता है खाना तैयार करो तो ऑर्डर करो नंबर सर खाना से बनी खाई मोमो दीजिए हम के जब आप देना तो बड़ा टूस पड़ा

0: अपने अपने नाम लिया पड़े या कर संरक्षण में लोना सब कुछ ड्यूटी
1: पश्चिम बंगल में संपत्ति आजादी का काल से छेद करने की आवश्यक था वही उससे बना आजादी नियंत्रण करना हमारे सबको का दायित्व और कर्तव्य हो
0: हमारा
1: सब कुछ अपने व्यवहार क्षेत्र में आदमी रेखा बनाएगा सुखा तुम रखना से आकर अपने मन सम्मान से सफाई करी
0: बीड़ी चूरट मजबूती का आगे बुटाई बनमन ने खा की
1: बनमन बार बार का काम नहीं करी
0: बनमन पिकने खाए गई से उस क्षेत्र में रहा आगे मना से बुटा के करना छोड़ी
1: सुखा मौसम में कोरोना आगे लगा फसफूस सहारी लाइटर लेकर नहीं देगी
0: बनमन आगे हुई अध्यक्ष से नगद बन कार्यालय सामुदायिक बन को प्रहरी करना खबर करी सबकुजना सुरक्षित तरीका से आगे बुटाई

0: संख्या 4 बजे क्रम पर मतदाता नामावली में समावेश न ऊपर दावी विरोध खुराक संख्या 4:30 बजे से 5 बजे सम्म समय निर्धारण गरेकी कुरा उजुरी ऊपर जांच पूछपाछ अंतिम मतदाता नामावली संख्या 5:30 बजे प्रकाशन क्रमत निर्वाचन समिति चलेगा। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार 2083 साल जेठ 1 गते बिहान 10 बजे से दिनकर 1 बजे सम्म उम्मेदवार का मनोनयन पत्र वितरण तथा उम्मेदवारी दर्ता कई चिन्हता उम्मेदवार को पहले नाम अवधि 1:30 बजे प्रकाशन कई चिन्हता उम्मेदवारी ऊपर दावी विरोध 1:30 बजे से 2 बजे सम्म होना चलागे बा दावी विरोध उत्तर जांच पूछताछ संशोधित उम्मीदवार का नाम अवधि दिन पर 3 बजे से लेने करना निर्वाचन समिति चुनेगा। उसने कहा सेठ 2 घंटे संख्या 4 बजे से 4:30 बजे सम्म उम्मीदवार नाम फिर सीखना व्यवस्था कई बा संख्या 5 बजे सम्म अंतिम उम्मीदवार नाम अवधि प्रकाशन कई पात्र से 5:15 बजे सम्म नमूना मत पत्र वितरण करना प्राधिकार निर्वाचन समिति अनुसार 2083 साल जेठ 4 गते बिहान 9 बजे से संध्या 4 बजे सम्म मतदान होना बा मतदान सम्पन्न मतगणना प्रक्रिया शुरू करना निर्वाचन समिति कार्यालय 5 बजे प्रमुखी कैंपस का सदस्य गोविंद प्रसाद शर्मा जानकारी दिलवाट सत्रह भारतीय जिला स्तरीय राष्ट्रपति अरिंद सिंह प्रतियोगिता में बांसवाड़ी नगर पालिका जिला प्रथम बनाकर बांसवाड़ी 27 16 16 रजत एक क्लास सहित कुल 52 पदक जीतकर उपाधि पदक हो 18 16 20 रजत 15 क्लास पदक सहित ठाकुर बाबा नगर पालिका दूसरा तथा 10 16 12 रजत 18 क्लास सहित राजापुर नगर पालिका तीसरा हुआ बांसवाड़ी टेक्वांडो में भारत कराते में छुमा छथलेटिक्स छात्र भलीबल और कबड्डी में समान 1-1 स्वर्ण पदक चित्तक नगर खेलकूद विकास समिति सदस्य नरेन्द्र बहादुर खत्री जानकारी बांसवाड़ी दूसरा फ्यारा जिला स्तरीय राष्ट्रपति रनिंग शील्ड में प्रथम पदक हो यात्रा का पंद्रह संस्करण होते बांसवाड़ी उपाधि जीतल नगर प्रमुख खड़ग बहादुर खड़का खेल क्षेत्र में कई दिन लगानी सफल हुई जिसके लक्षण की प्रतियोगिता में प्रथम खिलाड़ी खिलाड़ी पर कक्षा 11-12 सम्म निःशुल्क पठन पाठन का व्यवस्था करना प्रतिबद्धता दोहराने बाट नगर खेलकूद विकास समिति का अध्यक्ष खत्री खिलाड़ी प्रशिक्षक विद्यार्थी अभिभावक और नगर पालिका का साधक प्रयास में से सफलता हासिल करना कटौती निजी पासवाड़ी का गौरव पक्ष प्रतिक्रिया दे यह वर्ष का ऐसी परीक्षा में बर्दिया का दर्जन विद्यार्थी 4 जीपीए प्राप्त कर वो मध्य 3 जना सामुदायिक तथा 7 जना संस्थागत विद्यालय का विद्यार्थी एवं शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पर दिया जाएगा। सामुदायिक विद्यालय गुहर पड़िया तालुका पालिका का विद्याज्योति माध्यमिक विद्यालय का मोनिका थापा मधुबन नगर पालिका स्थित राज माध्यमिक विद्यालय का स्मरण उपाय हो बर्दिया नगर पालिका शून्य का भानुभक्त माध्यमिक विद्यालय का मनीमा अधिकारी चार्जी तिलानबाट उसे का संस्थागत विद्यालय और जनज्योति माध्यमिक विद्यालय कुलरिया का स्तुति भट्टराई कर्णाली आधारभूत विद्यालय ठाकुर बाबा का चिरंजीवी कड़ायत अरणी को इंग्लिश मीडियम स्कूल मधुबन निकिता खड़का पढ़ियाताल बर्दिया एकेडमी का रोजर देशी तथा कृष्णसार विद्या निकेतन का सुगम सुवेदी सुप्रिया सुवेदी और टीका बीका चाल जीपी हासिल का व्यक्ति का शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई का प्रमुख सूर्य बहादुर खत्री के अनुसार जिला में ऐसी परीक्षा में 5260 विद्यार्थी सहभागी जिन मध्य 63.3% विद्यार्थी उत्तीर्ण बाट गुलरिया स्थित कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र में बजट अभाव का कारण संरक्षण व्यवस्थापन में समस्या देख पड़ता खासे मैदान व्यवस्थापन मिचहा प्रजाति नियंत्रण पानी पोखरी मरम्मत का पर्याप्त बजट विभिन्न चुनौती बढ़ संरक्षण क्षेत्र चलने लगा 2032 साल में 9 गति गलत कृष्णसार का संख्या में बढ़ती जिले से सरकार उपलब्ध करी जाए बजट कटौती कृपा से संरक्षण कार्य प्रभावित बन रखो कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र को प्रमुख पोषराज पंत के अनुसार कृष्णसार के लाग आवश्यक गुबाद खास बंसो को उभरत नरम खास उत्पादन का खास संविधान के स्थापन में अवस्थित रह सके आर्थिक अभाव के काम पर कठिनाई की लगकार नहीं चले लगा खास को बिना समय में गहूं मसरी केराव मकई के सिंधारी समय लगाई ना पहले महाबल रेंजर तथा सूचना अधिकारी राम केसी के अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 में खास मैदान व्यवस्थापन मौसमी खेती का लाभ 2,70,000 तथा पानी पोखरी व्यवस्थापन का लाभ 3,00,000 रूपया बजट नियोजन तय जुटा जबकि पहले आर्थिक वर्ष 2081-82 में इस शीर्षक में क्रमश 6.6 लाख रूपया बजेट उपलब्ध प्रायको परिधि कार्यक्रम अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा 4,50,000 रूपियाँ खेल बजेट प्राप्त जनाएका बर्दिया जिल्लाका बयरताल गाउँपालिका 6 महिना पोखरमा अवस्थित कृष्ण शरद विद्या निकेतन यी वर्ष प्रवेशी परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्दै जिल्लाको प्रथम विद्यालय बन्न सफल भएका विद्यालयका सफलतासँग विद्यार्थी शिक्षक र अभिभावकहरूमा खुसी छाएका श्री शङ्करले अनुसार एक रिपोर्ट
1: बयरताल गाउँपालिका 6 महिना पोखरमा अवस्थित कृष्ण शरद विद्या निकेतन गरिने स्कुल यी क्षेत्रकै उत्कृष्ट विद्यालय के रूपमा परिचित र त्यागा यी वर्षकै परीक्षाकै नतिजा सिकेर विद्यालयको शैक्षिक

विवाह विद्यालय अनुशासन और शिक्षण शैली के कारण आज अच्छी सफलता हासिल करने बैठे।

0: अनुसार नैतिक अध्ययन अनुशासित शैक्षिक वातावरण तथा शिक्षक अधिकारी बीच की मदद समन्वय के कारण विद्यालय से जिले में उत्कृष्ट नतीजे लगने सफल हुई बात बताई गयी। फिर विद्यालय के पत्र अध्यापक नगेन्द्र भंडारी
1: सभी द्वारा

0: casa a comer a esa que publica una cabeza aquí. Esta tío me tiene a esa que buena H. Yo voy a cambiar la conquista que le tienes ahí, ¿no? Para comer una nueva tuya ya la conquista que le tiene.
1: Un chaval, ¿te parece que esto que no se va a ir a comer al señor? Aquí a que lo parezco que la marín linja y le puede intentarle y pasa. Cors a corrupar por mala mullera, com ser vos a gran, o tot cor per gossa un patigó. Cors a llera, nietos, cors a xupar no guardar, cap ni cap en la perina, per acollir pur ballet a ets, som a mar, cors a xupar com ho passa.
2: Jo n'hi que pa, de bonita de dir s'estranyi de petra, de que un mala et fem gossa a parema, ja n'hi posa i s'anés.
3: Dalam hal ini, tentulah kebijakan pemerintah yang terdekat
1: संरचने के अब मानव जाति जीवन संभव नहीं ना मिला हो से या कर संरचन में हम रास्ता पूरे जुटी
3: पश्चिम का मुझे संपत्ति आगामी का पाल से छेद करने की पूरी पड़ सकता और उससे पहले आगामी नियंत्रण करना हमारे सब उनका दायित्व को पत्ते हो
1: आगे आगे वैसे बंदों को किसी को बताए ना
3: हमारे सब कुछ अपन बड़ा क्षेत्र में आगे रखा पड़ेगा सुखा समय आने से लगा आखिर मरम्मत संभालों से सफाई करी
1: बिरिज रोड मासूकी का आगे बुटाई बंदूमों ने फाकी
3: बंदूम इतर गांव बनना काम नहीं करी
1: बंदूमों पिकनिक खाए गए लशे उच्च तो में रहन आगे मना से बुटा के चलना छोड़ी
3: सुखा मौसम बनना आगे बनना बस्तु सवाई लाइटर नहीं करनी होगी
1: बंदूम आगे न लग गए लशे लगभग बंद कराया है समुदाय बंद को प्रहरी हाना खबर करी सब कुछ ना सुरक्षित तरीका से आगे बुटाई ग्रामीण प्रचार क्षेत्र अनुसार बनाम आगे लगेगा हाथ लगे भाई देना कौन फिर काम करना वाले हाथ लगे मशीन नुकसान विरोधी को शुल्क का 60,000 रुपए समान जरिवान वाला 3 वर्ष कैद का दो सजाए विशेष था वो वर्षे बनाम आगे लगेगा वाला हाथ लगे विशेष ना किया कलाक निकली वो अपराध में सजी खोखा सजाए भागीदार नहीं बने डिवीजन बल कार्यालय पर दिया मत सुनिए चौरासी 4,256

0: करी संतुलित खाना खाई व्यायाम शब्द करी
1: धूमपान मदिना मात्रै दूर रही तना भना नियन्त्रण करी
0: आज निर्णय पाही जीवन हजार निशाना रोग से बाँची स्वस्थ जीवन।

ते दादाभाई दोनों प्रतिष्ठ को हार्दिक नमस्कार दत्तारी बजे सभी दत्तारी को अवसर दर्शक ओपन सेरेमनी थैंक यू भाई दत्तारी दुटी को देखियो तर एक छिन में हमें जस्के नहीं करें आपको हाथ रोके तेरी तेरी मेरे समय बजे रहो

हाथ से उड़ाने हम सारे सारे अकुल बुलाए तो शायद किसने सोचे होगा दो महीने की चिंता हुई दोनों चाली खेल बच्चे बोल लगे तो प्रतियोगिता होते हो जैसे लगी पड़ी और मान और टाला टाला में ढाई कर दी तो उसको दरबार होते ही जाना उसे जीता न सके का पावर तो नहीं चल चार रन मुस्तफ रामपति और बार इन देरी को सोते की तेज प्रतियोगिता में विजय होने का अपना प्रतिद्वंदी हो रहे और उदाहरण पटाने को जा रहे जब हम सब संकेत पाया होगा कि जीवन मैदान में आया मानस

सामने मुस्तफ है जितनी सकता थी सारों पर एक ही चेहरे पर जी नाजिस के शांत हो गए तो एक और बात शांत हो गई थी कि कौन सा विषय है आप लोग असल बाटा दिल को उठी चाहे सैनिक हो मुद्दी में आपकी दुष्ट हो गई तो राजा के आगे पारंग लोग ने सैनिक हो गई बड़े ना अर्थात तैयार कौन सा है बड़ा अपने सैनिक थे ना सैनिक हो न तो उन्होंने तुम्हें के राज सहित सके तुम्हें कौन सा ले अपनी राधा राधा का पारे न गिरने वाले अपुन जी के सैनिक हो गए राधे राम करते ना इसको जवाब अपुन जी के तीनों आगे ने किसने बोले ये महाराज कौन सा तुम्हें कहीं उठा अपनी सैनिक ये सवाल अच्छी बात है ना या नेकी का सभी सैनिक करो